सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 30 डिग्री के सेल्सियस के साथ साथ आप आनंद लेंगे थोड़ी ही देर में आपके मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आपका?
1: हेलो
0: जी, नाम क्या है आपका?
1: अरुण मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से, तीनासिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सीसा।
0: ओके।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
3: हेलो,
4: नमस्कार मैडम। नमस्कार
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
4: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: रतनलाल बोल रहा हूँ, महूकला पुलिस चौकी के पास से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: मेरे यार सुदामा रे बहुत बड़ा नाम है आया।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। सर ये गाना
4: ठीक है सर, बहुत

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: राधे राधे बहन जी।
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: आसाराम जगह।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बाजे के नौबत बाजा हमारा डीजे पूरी कर आ गया।
1: ऐसे सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: रश्मिना।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: प्रादा से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: तू सुनते बदमाशी का।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो
2: नमस्ते
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम तो कलवत आया हो
3: जी, बताइए।
2: चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ जी,
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बढ़िया लाए संडे को।
3: हाँ जी बताइए।
2: तौबा कैसे है नादान।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: जी, वेलकम।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हेलो
3: हाँ जी नाम क्या है आपका
2: आरवी गुजर
3: कहाँ से बात कर रहे हो कौन सा गाना सुनना चाहोगे
2: लुट पुट गया
3: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: नमस्कार दीदी
3: सर नमस्ते सर नाम क्या है आपका
2: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानी है बोल
3: जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे
2: आज वो बंटी और बबली का जादू है नशा है बंटी और बबली फिल्म का गाना है दीदी जादू है नशा है मदहोशियां
3: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
2: थैंक यू
3: वेलकम

0: पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
2: रेडियो डीएस
4: हेलो
5: सर नमस्ते
4: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें मैम
5: नमस्ते सर गाना कौन सा सुनना चाहोगे सर
4: गाना सुनना पिक्चर का नाम है खट्टा मीठा गीत के बोल है तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे
5: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश पर गाना रेडियस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
4: थैंक यू
5: वेलकम
6: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS साइंस Academy, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377. इसके अलावा 9983413111.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: कुरियस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: दोस्तों 10:57 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे थे हेलो फरमाइश का। दोस्तों थोड़ी देर यानी 11 बजे प्रसारण होगा आपका मनपसंद कार्यक्रम यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है
2: बोल बोल के थक गया क्या हुआ नया किरदार चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो नहीं सुना तो मैनेजर से
3: करेक्ट
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर चले ले आ गया नया किरदार
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
7: तो क्या करूं
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा
8: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
9: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
10: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया देश भर से आए थे इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस 100 मीटर की दौड़ महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए
11: अनिमेश जी नमस्कार गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार सत श्री अकाल
12: नमस्कार सर नमस्कार
13: नमस्कार सर
11: अच्छा भैया आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले
12: नमस्ते सर मेरा नाम अनिमेश कुजूर है मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली
11: और गुरिंदर वीर जी का क्या है
12: नमस्ते सर मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
11: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: जी मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है।

0: मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: जी
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई भी स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, तो मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर एनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं एनिमेश को बता रहा था भी एनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट

0: की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में वेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है, ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है, नेविगेशन हो,

पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गाँव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों

0: मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों अभी आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे। अब हेलो फरमाइश का

0: सिंगर तो बढ़िया, आजकल गायब पता नहीं कित हो गया।
1: गायब तो कहीं नहीं हुआ है बेटा, पर बस इसे लोग पहचानते नहीं।
2: राव पागल, मारवा साले का, चला मैं छोड़ यार, क्या छोड़ छोड़ छोड़, मारवा देगा।

0: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार। क्या हो रहा है यार?
1: हेलो,

0: जी नाम क्या है आपका अखबार?
1: नाम लक्ष्मीकांत शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगा जी कोठी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए।
0: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: जी आप ठीक है मैडम?
1: हाँ सर ठीक है। नाम क्या है सर आपका? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: जय किशन।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर सिटी, जीआर गारमेंट।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ।
0: तो कितना सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: राधे राधे।
1: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम मेरा राम सिंह है मैम।
1: कहाँ से बात करूँ?
0: मैं नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ये पारस फिल्म का गाना, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, इसका नाम क्या है आपका?
2: जी मेरा नाम है अर्षित सैनी, मैं टीआर गारमेंट से बात कर रहा हूँ।
1: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगी? हेलो,
2: लगता है डर। हेलो,
1: हाँ जी, गाना कौन सा सुनना चाहोगे?
2: गाना है लगता है डर छू छोड़े।

0: जी नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: ऐ मेरे साथिया तू कोई गीत गा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

और दोस्तों वक्त हो चुका है 11:59 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमा।

0: हेलो
1: पलक बेटा,
0: सत श्रीकाल
1: भाई, सत श्रीकाल बाबा नानक भाई, सू चढ़दी कला च रखे भाई। ठीक ठाक बेटा, पहला मैं अपने को बेटा जानकारी दे दू, तुम जो जानते हो ना। बेटा मैं पिंड मौड़ खुर्द जिला बठिंडा तो जगजीत मट्टू बोलदा भाई। सत श्रीकाल भाई सारे वीर भैनां नूं।
0: हमारे रेडियो डीएस की तरफ से भी आपको पूरी टीम की तरफ से सत श्री अकाल।
1: ते अपने बेटा बड़े सर मीना जी को भी सत श्री अकाल बुला देना भाई।
0: ओके सर।
1: हाँ बेटा, घर दे विच सारे परिवार ठीक ठाक है भाई? खैर सुखा वधिया थोड़ी सेहत?
0: हाँ सर सब ठीक है।
1: ठीक है भाई, अज तां अपना लाइव प्रोग्राम आ चल रहा।
0: सर लाइव तो नहीं है आज, कुछ काम आएंगे सर, तो आएंगे पर सर अभी बाहर गए कुछ काम।
1: होया की जे ती जम पई, ती दा गीत है बेटा, बेटी दा गीत है भाई।
0: कौन सा सर?
1: सिंगर का नाम है कुलदीप मानक।
0: अच्छा जी,
1: ते बोल मैं पंजाबी के गुणगुना कर बता।
0: इस पर ये गाना रेडियो डीएस। धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: एजाज खान पुरानी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: कई कुखा विच
1: मेहंदी तो रंग लाएगी।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: कई पाके तेल जला दंदे, कई पाके तेल जला दंदे।

0: क्रतुं महादाय सूर्य कोटि सम प्रवा निर्विघ्नम गुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बच्चे के परदादा का नाम बताइए।
1: लाला कैलाशनाथ मल्होत्रा।
0: अथ कैलाशनाथ मल्होत्रा पर पौत्र आगमनम सर्व कुटुंब कल्याण प्राप्त रस्तु। बच्चे के दादा का नाम?
2: रंजीत कुमार मल्होत्रा।
0: रंजीत कुमार मल्होत्रा पौत्र सर्व प्रसिद्धि प्राप्त रस्तु। बच्चे की दादी का नाम?
3: आशा मल्होत्रा।
0: आशा मल्होत्रा पौत्र आयुष्मान भव। बच्चे के पिता का नाम?
4: राज मल्होत्रा।
0: राज मल्होत्रा पुत्र चिरंजीवी भव।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम निशा जैन है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं जानवी जी?
1: वही फेमस जीजी सिंह
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जो न्यू सॉन्ग आया ना, उड़ी उड़ी।
0: उड़ी उड़ी?
1: हाँ वो न्यू सॉन्ग आया ना।
0: उड़ी उड़ी न्यू सॉन्ग आया है क्या?
1: हाँ एक आया है, पूछ रहा है ना।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।
1: आपका नाम क्या है?
0: आरजे पलक शर्मा।

0: देंगे तेरे नैना बड़े कातिल मारे ही डाले इस जंगले में तेरा
1: शायद ओनू वे प्यार वाली महक जही आवे असी फुल्लां उत्ते तितली बिठाई जान के
0: जंगले में तेरा
2: हेलो हाँ जी नमस्कार
0: योगेश जंगले में तेरा छत्तीसगढ़
2: हाँ जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे
0: जय हो मूवी से सुनवा देंगे तेरे नैना बड़े कातिल मारे ही डालेंगे
2: ऊपर से सुना रहे हैं कि फरमाइश करेगा ना

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसिंगना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं रेडियो डीएस पर। दोस्तों अभी आपने सुना है लो फरवाइज कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आपका मन पसंद कार्यक्रम नए तराने, खट्टी मीठी बातें और नए नए गानों के साथ।

0: आज है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828995000। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:09 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों, नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं। आज है तमाकू दिवस। विश्व तम्बाकू दिवस को विश्व तम्बाकू दिवस में सेवन आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, जागरूकता अभियान और सरकारी प्रयासों के बावजूद भी करोड़ों लोगों की किसी भी रूप में तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं। तम्बाकू ने केवल एक ही व्यक्ति का स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। तम्बाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य तम्बाकू दिवस दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना, लोगों को इनके बारे में बताना, इन घातक लत से मुक्त होना और इसके लिए प्रेरित करना। विश्व तम्बाकू दिवस निर्देश दिवस शुरुआत वर्ष 1987 में द्वारा की गई थी। इसे मुख्य उद्देश्य तम्बाकू से होने वाली बीमारियां, मौत और सामाजिक आर्थिक नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करना था। तब से लेकर आज तक के विश्व के अनेक देशों में इस दिन कार्यक्रम, रैलियों, संगठनों, स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता का अभियान आयोजित किया जाता है। तम्बाकू दिवस का एक पौधा होता है जिससे पत्तियों, बेटेनियों, नमक, नशीले पदार्थ पाए जाते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.
1: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
2: Ye DS Science Academy ke margdarshan mein chalta hai aur kaksha 1 se 8 ya isse aage tak shiksha pradan karta hai. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान. ये DS साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है.
3: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026. हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी. अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा. DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा. हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम एंड लेटेस्ट

0: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हमारा राजस्थानी गीत।
1: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों 4:30 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ में आपका रेडियो दूसरी सी।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
3: मोनिका जी बताइए, बताना सुनना चाहते हैं।
4: समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है।
3: सुना रहे मोनिका जी आपका।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीना जी की तरफ से। मोनिका मीना जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधोपुर से। सुनते उनकी फरमाइश की अगली ये बेहतरीन प्रस्तुति।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो सर, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: बहुत ही अच्छा। शारदा प्रसाद जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी मानवा राज से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पर रेल चला दूंगी।
1: बिल्कुल
0: में गया है।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के बेहतरीन सर।

कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताइए सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: डल गया दिन हो गई शाम।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी फरमाइश पे गाना। हेलो,
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।

0: हेलो,
1: हम बताएं आपको।
0: ऋषि मीना जी सर बोल रहे हैं क्या?
1: हाँ सर, ऋषि मीना बोल रहा हूँ सर, आपका नाम बताएं।
0: मेरा नाम सौरभ खटाना।
1: सौरभ भैया बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: टोटल हरियाणवी सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपका
0: गन भी सुन

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर आपका।
1: हेलो
0: सर, नाम बताएं आपका।
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका।
2: सर मेरा नाम पायल जी है।
0: पायल जी बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं पायल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
2: मेरा जी लागे से बब्बया मेरा बब्बया में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं पायल जी, आपकी फरमाइश करेगा।
3: जाके ढंग का काम धंधा कर ले, कोई फायदे मेरा वेगा काम आवेगा तेरे।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर आपका।
0: मेरा नाम सर राधे श्याम जाट।
1: राधे श्याम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: ऊटी से।
1: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं सर सुनना चाहता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है, यू पीछा परदान है दिंदौरी गोली चाले से।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: वो गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तो चीज बड़ी नंद
1: सुना रहे हैं आप, आपकी फरमाइश का।

0: क्या बात है, क्या बात है। जिस डेडिकेशन के साथ आपने इस गाने को एंजॉय किया, उसी डेडिकेशन के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इन लाइंस को भी एंजॉय करो। चलो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कह दिया उसने अलविदा, कह दिया उसने अलविदा, जिसने कभी जुदा होने के बारे में सोचा भी नहीं था। वाह वाह वाह, अरे अरे अरे, नहीं मैं आपको डेडिकेट नहीं कर रहा ये लाइंस, ना मैं खुद को कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, दोबारा मिलेंगे कल। फिलहाल आप ट्यून इन रहो 89.6 रेडियो डीएस पे,
1: गंगापुर स्थिति की धरती पर रेडियो डीएस।

0: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें
1: कि लोग मेरे गाने सुनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। क्या खूब बात कही उन्होंने। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर.
1: ना

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मन्ना डे को अपने करियर की शुरुआती दौर में अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली। इसकी मुख्य वजह यही रही कि उनकी सदी हुई आवाज किसी अभिनेता पर फिट नहीं बैठती थी। यही कारण रहा कि एक जमाने में वो हास्य अभिनेता महमूद और चरित्र अभिनेता प्राण के लिए गीत गाने को मजबूर थे। प्राण के लिए उन्होंने फिल्म उपकार में कस्मे वादे, प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा, यारी मेरी जिंदगी जैसे गीत गाए। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में हास्य अभिनेता महमूद के लिए चतुर नार गीत गाया। उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

नमादो लगत करे जवा में तो दुंग में तो हाय कह चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई फुल गेंद बान मारो नमा

किनारा जो गेंदवा कहलाए है, तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए है। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे कुल गेंदवान मारो न मारो कुल गेंद।

हसता कोन के जवान मारो न मारो न मारो न मारो न मारो हा न मारो न मारो जगत कर जवा में चोट करे जवा में चोट करे जवा में चोट कर घर देश थम मग घर देश थानी।

0: मारो लगत कर जवा में तो कर जवा में तो कर जवा में तो।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। संगीत जगत से जुड़े लोगों को हैरानी होती है कि इतने मुश्किल गाने मन्ना डे इतनी आराम से कैसे गा लेते थे। मन्ना डे को मुश्किल गीत गाने में महारत हासिल थी। कहा जाता है कि जब कोई गाना मोहम्मद रफी जी या किशोर कुमार जी जैसे महान सिंगर नहीं गा पाते थे तो संगीतकार सीधा मन्ना डे के पास अपना गाना लेकर पहुंच जाया करते थे। बहुत ही उम्दा कलाकार थे। फिर लौटूंगी आपके पास आज के लिए सफरनामे में इतना ही। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर

कूद जंगल में रड़ जा, हरी करे सो हो। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: stronger soul. New chapter. More power. Watch me.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89

0: कल कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है, बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई।
1: दो चार बेगुनाह मर गए तो क्या हुआ, तुम्हारे इस भैया जी की वजह से तुम्हारे घर में चूल्हे जल रहे हैं।
2: किसी भी तरीके से वो कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो उसे रोकना है।
3: तू चिंता मत कर, कल मैं पहुंचाऊंगा तुझे कोर्ट।
4: नहीं पहुंचेगा भैया जी।

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: सिंगर तो बढ़िया, आजकल गायब पता नहीं कित हो गया।
1: गायब तो कहीं नहीं हुआ है बेटा, पर बस इसे लोग पहचानते नहीं।
2: राव पागल, अरे साले चल ना, छोड़ यार, क्या छोड़ छोड़ सुन, मार मत देगा कुत्ते ने, जा भाई।
1: ये
3: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार। क्या हो रहा है यार?
4: हेलो,

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।